इसी टी देसी पे आज आप सुनेंगे बहुत सारे मिक्स किए हुए गाने स्पेशली क्यूरेटेड बाय योर ओन देसी आरजे विकास ऑन एसी टी देसी और जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर्ड रेडियो और ये जुलाई का मंथ है ये स्पेशल मंथ है बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी अकरेंसीज हुई हैं जो 2XXFM को लेके जो मेरे बर्थडे को लेके जो एसी टी देसी का पहला शो हुआ था वो भी जुलाई में हुआ था और इस महीने मैं मना रहा हूँ 7th ईयर ऑफ कम्प्लीशन ऑफ एसी टी देसी तो सुनिए ये गाने और चलिए मेरे साथ इस सेलिब्रेशन पे क्योंकि आप मेरे लिसनर्स इस जर्नी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं नमस्ते सलाम सत श्री अकाल वणक्कम किंजो

7 सालों को सेलिब्रेट करता है ACT देसी के, क्योंकि जुलाई का महीना वो है जब जुलाई 2019 में ACT देसी पहली बार ब्रॉडकास्ट हुआ था कैनरा में।